पर छाबिल चौकरेला हूँ कबाल रिकिनली छाबिल का करेरू खुद को सब ऊत वाल कुबे नकेम किम सा इलेक्ट्रा।